0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: अरे तू किस रे मारो भाई बंद को तो वाड़ा तारो कोई छे निरे भड़ा तारे डीले प्रेरो खेच लिए कपड़ा
1: हाँ।
0: अरे आंग वाजे लग जाए डपड़ा दारो सुड़को मार बयान जल्दी पाड़ा कतिन के दिले जान डूंगरे माई गाड़ा
1: बोल भाई
0: होटो अन्नान क्या मोटो पीला कांटो काड़ा पीले दारुन सारी रात जोई सारू बाता बात पड़ा।

0: तनी लेने को हरि नाम, देने को अन्नदान, चलने को निनता, डूबने को विमान।
1: बोल भाई बोल।
0: जेन डूबदार से तो कम मक्कार सरना एक करोड़ छठ रहनु गुर गुर गुर गुर मुस मुस मुस मुस करते हनु।
1: देख रे भैया।
0: जेन जो को नान क्या पनो लेन जेन तुकारा महाराज को कुछ। नान पन देगा देवा, नान पन देगा देवा, मुं

0: इतना क्यों नो छा? हाँ। अरे कल करे सो आज कर ले, आज करने का अभीज कर ले।
1: हाँ वाह।
0: अच्छी बातें सुझको आज कर लो, मांदी बातें सवार कर लो।
1: बरोबर।
0: प्रभु रामचंद्र भगवान अरे रावण मारण पार दिनो लक्ष्मण ने मेलो।
1: हाँ।
0: अरे लक्ष्मण राजनीति कूच लानो रे तो लक्ष्मण ने देखो रावण क्यों अरे सवार कर रो आज कर लो आज करो अबज कर लो।
1: बरोबर।
0: लड़ाई वेर भी तो सवार कर लो अच्छी बातें वेर भी तो आज कर लो। पानी रंग बांध रे पाल मरे रंग जिगल रे काल तारो डूबे रंग कतुई ढाल तारो बाप बेटो अंग मोटो काल अरे झलिए जरा मत कर रे हा।

0: सगे नज को काल खादा था
1: हाँ?
0: अरे हरि नाम ले वाले ना नमस्कार कर था
1: खरोज खरण
0: के तानी मारे गोपाल कृष्ण रो नाम
1: हाँ?
0: प्रभु राम रघुवीर रो नाम
1: हाँ?
0: माता पिता सेवा
1: बरोबर
0: सगेर माई कूद सानो
1: हाँ?
0: ये जलमे माता नी मर्जो रे मर्जो पण जरा कीर्ति रूप वर्जो
1: हाँ
0: मर्जो पण कीर्ति कर दो
1: खरोज

0: पच्चरे भा
1: हाँ।
0: पद को तो अपने सिरेरन का जो रोग आगो
1: हाँ।
0: अरे डॉक्टर कन चले गए
1: हाँ।
0: डॉक्टर के सहे मन घणो को ताप आवरो छ डॉक्टर को नाड़ी तपासन दिठो
1: हाँ।
0: डॉक्टर के लागो भा 105 डिग्री ताप छोड़गो छ रे
1: हाँ।
0: आज 2-3 डिग्री छोड़गो तो तू डगर जाई छी डगर जाई छी के तो काई केड़ी कामन को नहीं जा रो चार नार खांदे डगर जाई छी बस काई करू साहेब 1000 रुपया दे दे ई दवा दारू ले जो आनी तू को पथ पाल खाटो खरम मत खोग नी के दिनो ठीक सर के तानी 1000 रुपया दे आयो
1: हाँ।
0: घर आयो अरे भेसिर जामन 3 दाड़े में तू जो पील दो 3 दाड़े जामन पील दो मार बारो जो को हेड़ती सोई सड़ी जो हांडी उड़ा मुंडो को
1: खरोस खार
0: हांडी उड़ा मुंडो को वेगो जो वेगो ढगर को ढगर
1: हाँ।
0: को तू कहते केवड़ी व्यापारन को नहीं जो
1: हाँ।
0: सारी ताने खड़ी कराना को चार नार खांदे पर ढगर को
1: वाह भाई वाह
0: येरे सारू का के मिले।

ताई के मेरे छ। अरे भगवाने समझारो पत कुन सोच छ। डॉक्टर गने रो पति वेगो खटो खरो न खदो तो ताप डग जा छ। डॉक्टर समझा न्यानी श्री भगवत गीता कजखंड रामायण हरिपाठ तुकाराम बाबा रो गाता नवनाथ वास्तानी मारे गोपाल कृष्ण 84 तोड़े र वरे पायरी कर बेसे रे तो पत कुन सोच छ। अरे आपड़े घरेरी चटनी भाकरी सरला केरी बना दधा केरी। अरे दूसरे घरेरी सिरापुरी सरखा केरी। अरे आपड़े घरेर मांद सुंदा नारा तने लागिरे लंगाए पार। अरे दूसरी नारी रो दीदने रो प्रेम झूठो। जो बेटा संगत करिए जो रो कर्म फूटो देवे कंसरे त्राजुन कांटो। अरे तोला उंदाड़ कलियर बेटा नपन।

0: मोड़ छ कबीरदास महाराज के मोड़ छ। अरे कहने का कह दिया किता बजाऊं ढोल,
1: वाह भाई वाह,
0: एक सुहास्तिनी तालाऊं का मोल
1: बरोबर।
0: अरे तारे तार घरेर मालकन के दी पानी इंदर की
1: है
0: तो पानी की जन वो तो कोई दी भार ना भाई ना थे दी बोल रहे भी है
1: हाँ
0: तो तू काई करे ची मार मालकन दी कोई तो बोल रो सा
1: तन
0: घर कुराड़ी आलाई ची वो ना मैं थार करूँगा के
1: खरो खर।
0: अरे वो भाई ना थे दी बोल रहे पर तुझको पेटे में कंपला लाई ची
1: है
0: अन बेटा कान काटे कुटे कुतरा नहीं गली गली में हिजरा नहीं नन्नर नन्नर कर तो हिंडे ची तो ना लात छूटे नहीं। अरे गरीब की जोरी सबकी भाभी
1: हाँ।
0: गरीबेर मार कर शेर भोजाई लागत है क्यानु मैं भी दूसरे कान काटे कुटे कुतरा नाय लोकुर घर टुकड़ो हो छू मारी भी मालक ने जबरदस्त भेड़ गो वरोई काम ओवड़ी चाड़ो मारो ये ओवड़ी चाड़ो बला लागत बेटा के। अरे अपने बेटे के सिर मुंडाए छुरा लग जाए दूसरे बेटे के गर्दान तोड़े जरा शर्म नहीं आए। आपन मालक ने इज्जत को तो मोट अन गरीबेर का तो नानकीज का बेटा। अरे कीड़ी थी ब्रह्मदेव इतनी इज्जत सारक छ कन केन काय।

0: बनाना चाहे माटी। अरे दोपहर माटी दोपहर तो नहीं माटी दोपहर तो छोड़ दिनो काटी।
1: वाह भाई वाह रे।
0: अरे ढूंढ ली दो दारूर भट्टी पीले ताने अंधारी खान घर जनान तोना को तट्टी मालकन हेटे दी उठी भारान दीटी तो मार भ्या धोती घोड़े तुनी छूटी मालकन तो देखता नहीं बरकान धाटी।

0: अरे परपंच कर रे नेट का कति मत दकाद रे फाटका कामे माई काम हरी नाम रो गुटका पर हरी नाम रो गुटका छेनी रे
1: आओ रे
0: कथि तो ई दाता ने हाट अंदर के दोई जोड़ा वाड़ा कोई काई करे छ मालखणे अंदर तो हाट करे ना आठ और हरोगार भ्या भा लेता तो साठ वो मालकन काय करे रे आठ रुपया में काय हाट करे गी बागवाने कन क तो दादा ये वेंगन कतरा ना वो बागवान के जारी एक रुपया ना तो ऊपर नहीं उतरा पाले जो बिचारी वो काने वेंगन रस एक रुपया में पाला होता वो र प्रेसी गी कन क तो काले भूर क्या ला रहा था दादा ये कू यारी बारना ना तो ऊपर उतरा
1: देख रहे भैया
0: घरे लियाओ छ बेट बेटा धासना आओ छ यारी मारी यारी आई मर माता आई छोना गज गजड़ी छचारे केड़ा दस वो छचार पड़े बुदन छोलन खाए देख छो छोड़े रंगा का केड़ा तो गदड़ी न वाला छ मुंडे साऊ घाले के तो खाए रेकड़ी दादा ऊपर ती सड़े का मातो दास बारनार केड़ा खाई ची खराई ची नीरलजम सदा सुखी आठ रुपया हाट कराई ची साठ रुपया रो दारू फेची नीरलजम सदा सुखी ची तू अरे तो न मानस करो तो अक्कल छे नी ढोर करो तो लारा पुतलो छे नी ये जलमा अपनो सेवटा वालों का

0: छिटाई लावा ये छिटाई ते लावा जन आड़ दाड़ खानो। अरे नीलगाम आटा पंचे 40 दारू छोड़ दे, आटा पंचे 40 रुपया रो एक किलो तेल आए कनक, एक धोवो तेल हांडी में खलाऊंगा ना के। अरे कालो भूर पानी खोरे गुलाबेर फूले ना तार बेले बेट बेट बटा रही है
1: खरोच खैर
0: मालकन गुलाबेर फूले ना ही रही है तारे ऊपर कर्ज कोनी व। अरे जोजार गले माय मंगलसूत्र भान मेलो चीज लाज छूटनु लागी है तो ना। अरे कांजी सोने डागिना गले में घाल द मालकन चम चम चम की तो तारो भगवान कल्याण करिए। अरे हिजड़ा रावला दूसरे तांडरी साउंड देखन बार शब्द दियाईची घरेर मालकनर भूखे मारे तार सुगो पापी जगेम छेनी। हाँ। कहीं

एक छटाक तेलेर माई मावली काय करे रे भा मु करता नहीं ऊंदा इनकी तो एक न दी बूंद पड़ते खमत यारी शेत पड़ गए छोरार कावलीर माई दीज बूंदेर माई हेट भगला तपरच फक्को वच कर जाच हरोदार पानी खान सत्तो पड़ रहे ची अन एक दारू तो न छूटे नहीं तू मानस का मानस का अरे लार देख साधु संत काय कर गए मोती वालों सदा क्यों गोचो कोई मारे मनेर मकोनी करो कबीरदास गोरुबा काका सावता माली नरारी सोनार जनाबाई मीराबाई संत सुकुबाई चौका मेला सजन कसाई निवर्ती ज्ञानदेव सो पान मुक्ता बाई एक नाथ नामदेव तुकाराम कबीर कमाल रोजा सामान नरहरी सोनार गाड़ गए बाबा कई कारी बाबा।

बार रुपया ले लेच चलो जा चलो जा खोद के बेटा ना तो काम करके कलच अरे खोदे ना आए कौन रे पांच इंगली बरोबर छे नी हम कते दी आए जा हमें वैकुंठ वासी आलो यार।

नामदेव महाराज कह रो रे सेना, अरे भगवान नाम ले लो रे, भगवान नाम ले लो रे, भगवान रा भगवान साई वेदा है तमे ना। अरे कहीं पड़े नहीं रे, कहीं कम पड़े नहीं रे तुम्हारे जिंदगानी ना।

0: सेवा की दिरे अनुसुया माता ब्रह्मा विष्णु महादेव तो चालना ये सता। अरे कली युगे माँ बनना की गीता
1: वाह भाई।
0: अरे ब्रह्मा विष्णु महादेव आए अनुसुया घर नगी भिक्षा लाए माता भार नितो सत वाले जाऊ तार
1: देख रहा।
0: अरे अनुसुया माता गिरे घरे माई पति देवरो चरणरो पानी लाई तीनी देवे पर पानी छिटकाई। अरे तीनी रहू तो बालक बनाई तीनी हाथ तीन हुंडा धारण माता पाने हलाई।

0: माता तार पेटे माते निकन तार थट्टा कोनी करू ए वेद पुराणे में से वाते सिसु को तन में क्यों
1: हां भाई
0: तारो देव कुण छे वेंडी तारो देव स्वर्ग में छेनी तारो देव पाताल में छेनी तारो देव पुदी पुराणे में छेनी तारो देव कतच जो बाई पतिव्रता देवे पर तार सता पतिव्रता रो भाव तारो

माता अनुसुया माता काई की दी थी अनुसुया माता कौन से देवी नाम धोखी थी कहीं लगाड़ दे उदबिन उधे उधे उधे की दी थी काई को नहीं की दी तमको कितने बसने नान पे सोचो जो गिरजा साईत्रानी लक्ष्मी ये तीनी बेटी थी वो ते नारद स्वामी सवारी जा रही थी नारद स्वामी ने पूछी नारद स्वामी ये जगेर माई भाई हमें थी मोटी कोई छगाई पर नारद स्वामी ने आता है खेलवे तो कत्ता अंगार घर दानो बड़ी मीर माई पक्को मालूम है तो के गो ए वेंडियो अनुसया माता थे महोर गडेर माई वो ढाई टांगर कीमत तमार तीनीर कीमत एक के गो भाई ने धक पड़गी भाई हांडी उड़ोड़ा मुंडा कन बेच की कौन गिरजा साईत्रान लक्ष्मी ये केरी मालखने ब्रह्मा विष्णु महादेवरी मालखने ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनी तीन काम कर ब्रह्मा देव कीड़ी थी ब्रह्मा देव तुम रक्षण कर कीड़ी थी ब्रह्मा देव तुम्हें जो जीवदान दस सेना रक्षण करो कटे पर हाथ देने वीटे पर हुआ सप्त पाताल आघात ब्रह्मांड चलावाड़ो कीड़ी थी ब्रह्मा देव रक्षण करे वालो जली थड़ी काकी पाषाने मरिया मारो।

सेवा सेवा कना कांदे पान नाच कोनी क्यों रे जल्म दिवाली माता तोन में अनुसुया माता कुणसी देवें धुकेन की थी कोनी की काय की दी वो ब्रह्मा विष्णु महादेव मानव रो भाई दानव रो देव रो भाई मानव रो बाहरी बातें सामने आए तो वो रो तो बरोबर करस कू फेरस भाई बाहर आरे मारो माटी तो बाहर कू फेरस भाई लोग देवे मारसे ना दोरी फिर भी ते भौरियाला दोरी फिर भी ते भौरियाला।

0: बाईने डिलेम देवा आवत छ
1: हां
0: बाईने डिलेम देवा राज भगत भी खेल छन वही खेल छ ठीक छ
1: खरो खर्च
0: अरे बाईर डिलेम देखु आवरे भा सरपंचर बाई राईनी वाणी गुजर मारवाड़ी बाई डिलेम देवा आईनी ये सारी दाड़ो भाटा पारदाणी काल काबर वेरा आठ दाड़े में अपना अंगुली खिरवाड़े डेले डिलेम देव केवड़ी धर सारे बेंडो अरे लबाड़ लबाड़ लबाड़ लबाड़ ये माया से फसायो से बाई जको काई करे से बाई डिलेम देवारो अरे हूं हां करी एक छोरा हेट बैठो तो वो काई की दो भाई डिलेम तो देव आरोस को लागो पांच पचास रुपया कड़े खसोड़ मिली छोरा पीसी काली दो को तो कला भाई काई कहे वालो छ के देता नहीं कन बैठो तो छोरा खाएंगे तो घाल दोनों पीसी हाथ में काड़े नहीं गयो भाई काई कच गप्पे सोने डाकने खाता गप्पे सोने मरियामा खाता ये डिलेम तो देव आरो ये ना काई भी पाड़े तो गप्पे डू पर लबाड़ से माया बड़ी कटूर से काट कली दो खावत छ अरे हकीम बिचारो कटकट दवा लगाओ अरे साधु सन बुमड़ी मारन के गए बोमलुनी सांगे तुका बोमलुनी सांगे तुका नाम

0: आदि शक्ति तेज कचरा दुगो कुलचुतो ने
1: का का
0: हजार सूर्या भड़थाणी
1: हां
0: अन वो आदि शक्ति पर जगन माता पर जो हजार सूर्या लेड जर फेंके
1: हावा
0: को तो हजार सूर्या सकर खान हेड पड़ जाते है वेंडी आवड़ी बेली देवी तार माई कु घुस जाती वे लबाड़ लबाड़ लबाड़ माटियांग हुबो तो ई छोरा पिसी काली अगर काली दी पिसी और माटी ने काय के तरे
1: हां
0: करी ना उ काय के लागो मार मालकन मन बलाडी श्री राम आयो यारी मद्दी करू छे एकच वच साटा खोदू एकच वच धूड़ पाडू एकच वच मनद्दी करे यारी या करो
1: हाँ।
0: बेटा तारो बरोबर करो बेटा तारो कल्याण करो बेटा तो डबल उनु बेटा वाया की दे जना ई माटी यरो देव माटी यरो माटी वाया की ना सात फेरा बना यरो माटी हो अब ये डीलर माई आओगे जना ये गोवर यारी हुई यरो बेटा हो
1: हाँ हाँ।
0: मसोबान गोनी छेनी सटवाई धनी छेनी
1: हसी
0: बाई दर वेजा है हाँ। खिलाड़ी कविता को भुकम वेगो तुगो टेम आओगो सा वो रे सारू तुगो भगवान नाम ले लो मारे प्रभु रो नाम लेता नहीं चौरियासी चुका लो।

0: मट्टी बाहर वास सामने कौन आओगे? ब्रह्मा विष्णु महादेव अनुष्या घर आओगे। अनेक निरंजन भिक्षा आए भाई आले अति था मुरबर द्यावे मागे पुरे पहुन का तुकार महाराज के गोच करण केता ने भिक्षा भर लाने की याडी नूला ने कुल्या वाचो ढुंगली भिक्षा तार मायर कोठी में ती कोई जुगाल ठीक से गे माई पति देव अंतरदशी सुतो तो गड़बड़े थी की काय गलागो काय गड़बड़ चाल रोच गड़बड़ काय छे नी महाराज भार कोई तुई आए छ मन काय करे छ भुंगली भिक्षा घाल करे छ ऊ गलागो तारे माई वत चमत्कार दो करे लगा नमस्कार म काय करियालो कोनी महाराज मोटो खेल से ही कोई बाकी नाक नाकेर छे नी तो न पूछता मोटो खेल से तू उठ हेड़ती हेड़ती उठा वठाण बसार देनी पगे पर मातो मिल देनी पग धोनो पानी पील दी तीन ही देवे पर पानी मार देनी तीन ही देवे रावड़ा कोड़ा शिविर पीला नहीं वेगे म्याऊ म्याऊ म्याऊ करे लाग पाले में घाल देनी हाथे हुंडा झला देनी पालनो हलाती बेसकी केर जरे पर बेटी आई वेंडी डीले माए तो कहीं कुर्सी देवे धोकिन गीती कहीं
1: कोनी कोनी
0: अये तू आसत भले धुनी पर मातो पटकले छी माटी कुं बोले छी माटी थी तो सुधो बोले मुंडो भरन बोल माटी ने एवडी धुणी धोकचन एवडी तुक माटी ने कुं बोले छ धोसे मुंडे रा हरे गार जाबड़े रा मुरिया मा खाईनी याड़ी पाड़े नी हिरान काई मारसा मुंडो फ्रेंड सुनी भी है काई सारी तांडे लान ये नगाल दू काई सारी तांडे लान खाल दू के जिन धुनी पर मातो पटके ची धुनी पर मातो पटका लोई काले दवा खाने माई जर मीना बरो सुती तो नी याड़ी साई वे नी करन के भाई।

0: अरे नारद स्वामी चलो गोरे वो तो गिरजा साइत्रा लक्ष्मी कना ये वेंडी जावे ननका ननका छिचा करन पाड़ मेरी झोली में जाना बलाला तुम्हारे पति देवे ना
1: खरोच खा
0: अरे गिरजा साइत्रा लक्ष्मी आई रे अनुसुईया माता कना ए जन्म देवाली चुकवे को हमारो पति दे दा हमें ना ले जा तुम्हारो पति ये बेटे ले जाओ वो के लागी प्रभु राम ले जा मां बात खर्च मारो कालो तो ना तारो काबरो मन डिगरा दो भूल पड़ जाए कुंकरिया ए जन्म देवाली माता तू चढ़गी हम हारगी हमारो पति हमने अंदर ए गिरजा इधर तारो भगवान शंकर ए साइत्रा इधर तारो ब्रह्मदेव ए लक्ष्मी इधर तारो विष्णु आशी धाटी महाराज होटो देकर लार देखन आंगन हास अजी नान के नान के शिचार करना के तो काई के आंगन के पर तो तीन ही वचन देगे दत्तारो अवतार वेतानी मोहर गणेर माई जल में लीदे कोला प्रेम माई भिक्षा की दे घानगा प्रेम पांच मिनट बैस गए अनि निद्रा जुगा जी जुगो मोहर गणेर कर सा अपना खेत मारवाई छात्री ताकन मारी जल में जड़ी माताम छ पर काई करू लागत छ।

सेवा की दिरे सांडलिया माता। अरे तीनदार सूर्यान थमातानी ब्रह्मदेव कने ती। अरे वो तो पति देवे ने होटो लाई। अरे सूर्यान तीनदार थमाई।

0: गोपाला गोपाला प्यारे नंद लाला पर एक दाड़ भाई काई की थी
1: हाँ।
0: ई गोपाला गोपाला करे वाला कुंड तक के ने वन पकड़ी थी
1: हाँ। काए
0: छोरी काई करी छी भाई ये काई करी में कुछ है मन वचन ये लो वचन काई करी छी ई देखे भाई मारे घरे मुड़ा गए तू गी थी के छे आर दाड़वे के पछ मारो मालक तो देख ली दो छ अन वो भाई साहब लेगी तो ठीक नींद में फांसी खान मर जाऊं करे थे यारी मारो सोने सिर को माटी मर जाए येरो माटी सोने सिर को बे तो कहीं जल में देवाली माता गोरे ती टांगे छे नी कुणी ती हाथ छे नी केवार नहीं पाथरो जेन मारो सोने सिर को क्यों सोने श्री केरी तम भी कहीं करो पगू पड़न कुछ हाथ जोड़न कुछ तुम्हारे नसीबे ना आंदो मलो लंगड़ो मलो खुड़ो मलो आचो मलो नसीबे रो खेल छ तो वो न मारो देव ग्रह समझी तो तुम्हार स्वर्गीय माई घंटी बाज आए करण कहता नहीं वो माटी ने जो को वचन दिया वो खेला भाई कहीं हरकत छे नहीं तारो माटी मेल द मेल दू छू पण भाई ये नमूना रो छो कू मेलू वो खेला मैं वेश्या छू मारे घर तो साव थन दस साव छ एक आधी टेमे ने फलाना कोडाल घर तो आज को तो मारो धंधो पड़ जाए बंद यारी रात बार वाता लिया है पति देवेर सेवा करे सारू मालके ना जोकवर विचार पूर्ण करे सारू वोल्डिम घाले तानी भारत जारी पण भगवान मारो नीला रंगेरो घणु खेलिया छ देव घणु गो गोपाल कृष्ण घणु खेलिया छ देव रंगारी रंगारी देव रंगारी रंगारी 16108 नारी भोग

पवित्रा बाई सगाई करे सारू चार चार लोग गोड़ा भिगे वो तो नारद स्वामी आगो अन सत्यवान सावित्री ने कहें कि ए वेंडी ये सत्यवाने ती तारो वाया मत मत मत का बारह महीना मरजावड़ो छे ए वेंडी अन तू तो को दाड़ कू काढ़ीस बारह महीना मरजावड़ो छे ठीक था मरगो तो मारे माई मारो पत जर खरो हुई तो मारे पति देर में उठाली और मने कह दी गोड़ पानी वेगो बारह महीना बारह दाड़े तुनी और लारा कनाई जुको लकड़ी निकी को नहीं वो दाड़ी लकड़ी लावा वो लकड़ी फोन आकर व्यसन निर्वाह चलावा एक दाड़ा अब इस सार पूर्णिमा से याद बड़े पूर्णिमा कट है उन दाड़ा जखो निकलो सत्यवान निकलो उन दाड़ा मातराम सवित्रा की मत तार ला रहा हूँ चू मते मत मत मत दाड़ी आई आज वर्ष जखो कोनाई कोनी आई आज घुमाई थी कोनी पति दे माऊँ चू मारा हट्टा त्रिपुरा ठीक से चले गए चले गए न पुनिमेर दाड़ो रह अत हट सा अत दे फाटा वे करेर माई एक फाटा उड़ेरो रह मारे झोलो सब को मरगो मरते खमात येम राजा लेतानी मायरो प्राण निकलो निकलो जना लारा लारा लारा लारगी होटो भरन देखो तो बाई चिल्लाओ ए छोरी काय मांगी ची मांगे तोर मैं देन तैयार छू महाराज मार सासू ससुर आंदे छे मार सासू ससुर आंदे छे मार सासू सरे आकी देनाक अतरी मांगनी तथास्तु।